प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए, शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्यश्री। रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

0: का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागी प्रस्तुत संदेश
1: युनाइटेड अस्पताल बारदिंगा चार ठाकुरापुर कपिल वस्तु में बिरामी का लागी थप नया सुविधा
2: कंसल्टेंट फिजिशियन डाक्टर गोविंद रावत छाती तथा श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या मुटु रोग मृगौला रोग पेट र आन्द्रा को समस्या कलेजो थायराइड र मधुमेह सहित का रोग को पूर्ण परामर्श र उपचार
1: हार जोड़नी नसा तथा बात रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खान द्वारा हार जोड़नी संबंधी समस्या हड्डी भाँचिएको रडहरू राख्ने निकाल्ने नसा च्यापिएको लगायत बात रोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजे देखि साँझ 6 बजे सम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ
3: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेल द्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ पित्त थैलीमा पत्थरी हर्निया एपेन्डिक्स आदिको दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन स्तनमा गाँठागुठी फोका घाउ पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नुहुनेछ
4: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर सन्देश आचार्य द्वारा गर्भवती महिलाको नियमित जाँच डेलिभरी तथा शल्यक्रिया पाठेघर सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा महिनावारी गडबडी सल्दो पेट दुख्ने तथा फोहोर पानी बग्ने समस्याको उपचार बाजोपन पाठेघरको क्यान्सरको जाँच तथा परामर्श
1: वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा
3: अन्य ओपिडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ
2: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु सम्पर्क 076-550-200 मोबाइल नम्बर 98-570-55-138
1: अब ढुक्क हुनुहोस् विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै

0: ओहो देखा जाए ना मुंह कूदत है।
1: उहे तो बरसात के समय है, बखार के आना खुले है कि मूस आए तो अब मूस हेरब सपबो आ सकत है।
0: ओहो हाँ तो सही है, याद हो गवा घर के आसपास झाल झुंगा बढ़ के बहुत बड़ा हो गवा है, काटेक रहा।
1: हाँ ऐसा करा जाए तब काल सवेरे पूरी तरकारी नाश्ता करा जाए और सब परिवार मिलके साफ सफाई करे के हुई और आसपास के फुहर व्यवस्थापन करे के हुई ना।
0: होते होते ऐसा समय पर तो बड़बार घास फुहर गंदगी रहा जगहन पर सांप लुकाई के बैठा हो सकत है ना।
1: वही से तो कही थे बिटिया समीरा बेटवा विवेक तोहरे सब और हम मिलके घर के आसपास का बड़वार घास काट दिया जाए, काठ लाएगा जलावन घरे से कुछ दूर व्यवस्थापन कह दिया जाए, डेहरी के आना सांप मूस न हले के में से मरम्मत कह दिया जाए और घर के आसपास खाली और साफ होए के बाद सांप आवे के अपने कम हो जाए न।
0: हाँ काल संचरो हुए सवेरे सब फुर्सते में हो जाता है।
2: सांप बरसात के समय में सूखा जगह पर रह पसंद करते हैं। यह मौसम में अपने बास स्थान पर पानी चल जागना पे सूखा जगह के खोजी में वो लोग बाहर निकलते हैं।
3: मूस मुर्गी जैस चारा के खोजी कार्यक्रम में सांप मानव बस्ती नेरे आ सकते हैं।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करें और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहीं के पता लगाए आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाते हैं।
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: बारदुङ्गा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिल वस्तुको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना। यस बारदुङ्गा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिल वस्तुको आर्थिक वर्ष 2083-84 वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम मध्ये प्रथम चौमासिकमा निम्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गरी प्रस्तावना छनौट गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक कृषक समूह कृषि सहकारी संस्था तथा कृषि फर्महरूले यो सूचना पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिले 30 दिनभित्र अर्थात् 2083/5/31 भित्र बारदुङ्गा नगरपालिका कृषि विकास शाखामा निर्धारित ढाँचा अनुसारको प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
6: 50% अनुदानमा बिउ उत्पादन कार्यक्रम गहुँ न्यूनतम मापदण्ड कम्तीमा 30 कक्षाको एउटै पलट हुनुपर्ने बिउको रूपमा प्रयोग तथा बिक्री वितरणको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने सिंचाईको सुविधा भएको जग्गा हुनुपर्ने 85% अनुदानमा साना सिंचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माण न्यूनतम मापदण्ड कम्तीमा 3 बिघा सिंचाई हुनुपर्ने 50% अनुदानमा साना मेसिन औजार वितरण पावर टिलर मिनी टिलर रिपर कन्सेलर कम्बाइन्ड मिल र ज्याप प्लान्टर न्यूनतम मापदण्ड कृषि प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने पावर टिलर मिनी टिलर रिपर कन्सेलर कम्बाइन्ड मिल र ज्याप प्लान्टर मात्र माग गर्न सकिने 50% अनुदानमा मागमा आधारित व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम न्यूनतम मापदण्ड एकै ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा कम्तीमा तरकारी 5 कट्ठा फलफूल 5 कट्ठा च्याउ 500 बल्ब बिउ उत्पादन 30 कट्ठा पुष्प 2 कट्ठा नर्सरी 1 कट्ठा हुनुपर्ने 50% अनुदानमा उन्नत बिउ वितरण गहुँ खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ उपयोगमा अनुदान गहुँ न्यूनतम मापदण्ड आफ्नो जग्गा वा भाडाको जग्गा हुनुपर्ने सिंचाईको सुविधा भएको जग्गा हुनुपर्ने
7: संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू कृषक समूह कृषि सहकारी कृषि फर्म जल उपभोक्ता समिति 2083/31 भित्र दर्ता भएको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नियमानुसार नवीकरण सूचीकृत भएको कृषक समूह कृषि सहकारी जल उपभोक्ता समितिको कार्यक्रम मागको निर्णयको प्रतिलिपि वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको लागि छुट्टा छुट्टै निवेदन कृषक समूह कृषि सहकारी कृषि फर्म जल उपभोक्ता समितिको कार्यालय भवनमा राखिएको साइन बोर्डको फोटो कृषि विकास तथा कृषि प्रचार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2078 अनुसूची 2 अनुसारको ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्नुपर्ने लाल पूर्जाको प्रतिलिपि वा जग्गाको क्षेत्रफल खुल्ने कागजात सिरियल नम्बर 5 र 6 को लागि व्यक्तिगतको हकमा नागरिकताको प्रतिलिपि लाल पूर्जाको प्रतिलिपि वा जग्गाको क्षेत्रफल खुल्ने कागजात र अनुसूची 2 अनुसारको फर्मेट सहित बिउ माग सम्बन्धी निवेदन मात्र
6: नोट कृषि विकास तथा कृषि प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2078 यस नगरपालिकाको वेबसाइट www.baganga.mona.gov.np बाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ पुनश्च आवेदनमा माग भए बमोजिमका सम्पूर्ण कागजात नपुग भएमा नगरपालिका कृषि समूह कृषि सहकारी कृषि फर्मको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि बाध्य हुने छैन
5: विस्तृत जानकारीका लागि बारगंगा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 98413-52747 र 98576-29379
6: हरेक गहनामा लुकेको हुन्छ एउटा सुन्दर सम्झना विवाहको खुसी तिसको उल्लास अनि मायाको चिनो
5: ती अविस्मरणीय क्षणलाई अझ विशेष बनाउन आउनुहोस् जय सुपा देउराली सुनचाली पसल बारगंगा 2 पिपरा कपिलवस्तु
8: उचित मूल्य र आत्मीय सेवा पुराना गहना साटेर नयाँ बनाउने सुविधा कम्प्युटराइज बिल र भरपर्दो ग्यारेन्टी
5: जय सुब्बा देउराली सुनचाली पसल विश्वासले रोज्ने नाम सौन्दर्यले चिन्ने पहिचान बारगंगा 2 पिपरा कपिलवस्तु सम्पर्क नम्बर 98576-56249 र 98075-18346

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादकहरू
1: बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव धीरे धीरे चल रे अजोरिया धरी धरी पाँव उफ अब जाए की घर के देवाल लिपोती के ओराय लाग
2: मुस्कान बिटिया ए मुस्कान बिटिया घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म बाबा खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा
1: ओराय लाग अम्मा
2: ए अच्छा हम नहारी बनाए के धई दे थे अब दे लेके चली जाओ
1: हो थे अम्मा ओहो यही देवालिया में बिल है माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ हाँ अब बंद कर दे थे
2: अरे बापा रे अम्मा हमें सांप दस लीस अरे बाप रे बाप कहाँ दस लीस बिटिया
1: यही दही है हाथ में दस लीस अम्मा
2: अरे अरे क्यों क्यों अरे है क्यों हमरे मुस्कान बिटिया का सांप दस लीस अरे क्यों है क्यों है
3: अरे कहाँ हुई गवा कहाँ हुई गवा काकी
2: राकेश बाबू देखो ना मुस्कान का सांप दस लीस की काओ
3: ना घबराओ जाए काकी मुस्कान ना घबराओ शांत हुई के बैठी रहो काकी बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए
2: वो थे बाबू मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो
1: होता है
3: काकी आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए न कस जाए के मेर से और हाथ के चूरिया खोल दिया जाए दस लिया ओकरा हाथ ना चलाव जाए
2: हो थे बाबू और साफ दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की
3: नहीं काकी नहीं साफ दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए और कुछ नहीं खियावे चाहिए पनियों नहीं बुझा गए ना
2: तब तो जहर मोरा लाई के सपुआ दस लिया जगह पर लगाई दे तो बाबू
3: वो नहीं काकी घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए बुझा गए ना
2: बुझेन बाबू बुझेन
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये कहा जाए तब तक हमरिंग के गाँव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है हाँ डाटा हम कैसे देख करा हाँ देव snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा हमरे इनके गांव से तो गोरसिंगिया सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है मुस्कान का वही ले जाके पड़ा
2: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुंचाई मिला तो मुस्कान का बताए सका जाता है
2: जी हो थे बाबू चलो
4: याद रखा जाए सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए या कौनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो डस सकत है संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे के मदद करत है विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाई के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए, शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री। रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

0: अब जाए की घर के देवाल लिपोती के उराय लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म बाबा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उराय लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बना के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: होते अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे अम्मा, हमें सांप दसलीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दसलीस बिटिया?
2: यही दही है हाथ में, दसलीस अम्मा।
1: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमरे मुस्कान बिटिया का सांप दसलीस, अरे क्यों है क्यों है?
3: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप दसलीस की काओ।
3: ना घबराओ जाए काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुताव जाए और ना हिलाव जाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: होता है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कर दिया जाए, न कस जाए के मेर से, और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, दस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और सांप दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, सांप दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियो नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो गहर मोहरा लाई के सपुआ डस लिए जगह पर लगाई गई तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दे जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाए। कहा जाए तब तक हमरिन के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम कैसे देखे पड़ा। हाँ लियो snakebitenepal.org वेबसाइट खुली बाबा, हमरिन के गाँव से तो गोरसिंगिया सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए, मिला तो मुस्कान का बताए सका जात है।
1: जी हो थे बाबू, चलो
4: याद रखा जाए, सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कौनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जात है, लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है, और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: हरेक गहनामा लुकेको हुन्छ एउटा सुन्दर सम्झना, विवाहको खुशी, तीजको उल्लास अनि मायाको चिनो।
8: ती अविस्मरणीय क्षणलाई अझ विशेष बनाउन आउनुहोस् जय सुप्पा देउराली सुनचाँदी पसल, बारगंगा दुई पिपरा कपिलवस्तु।
9: उचित मूल्य र आत्मीय सेवा, पुराना गहना साटेर नयाँ बनाउने सुविधा, कम्प्युटराइज बिल र भरपर्दो ग्यारेन्टी।
8: जय सुप्पा देउराली सुनचाँदी पसल, विश्वासले रोज्ने नाम, सौन्दर्यले चिन्ने पहिचान, बारगंगा दुई पिपरा कपिलवस्तु। सम्पर्क नम्बर 98570 56249 र 98075 18346।